0: ड्रामा।
1: इसलिए मैं तुझे यहाँ लाया था, अपने घर में रखा, तुझे अपना बेटा समझा कमीने।
2: कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, लंगड़े लूले अपाहज, तुम मुझे इतना देते हो उससे छह गुना काम लेते हो।
1: कमीने!

0: जब्बर सिंह ने सिर्फ दो ही बातें सीखी हैं, एक मौके का फायदा उठाना और दूसरा अपने दुश्मन का नाम निशान मिटा देना।
1: आज से ये गांव मेरा भी है। मैं तुम सब के सामने कसम खाकर कहता हूँ, डाकू ने दोबारा इस गांव में कदम रखा, मैं उनका सामना करूंगा।

0: कल मार मार कर जिसकी मैंने चमड़ी उधेड़ी, आज वो मेरा मुकाबला करने निकला।
1: यही तो सोचने की बात है ठाकुर। आज तक तुम जिस रास्ते से निकले वहां आदमी तो क्या, पत्तों ने भी खड़खड़ाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन
0: अब क्या।
2: हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां।
3: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का सुरीला संगीत,